तो मटेगे सगाई को कितियों कानी वे आगे रे कभी सगा को गिल के जित को लेंगे ओले में दिता बेगा को नास का को जंबी का पैसा आगे रे फेइते ड्विन एंजेलिन पास्कलिया को पता जित ने की गुरे सै रास अगमस मिया सबा इना टेंबे अगम योते इरो का सने न्यू मनो इरो मनो का सने न्यू चुतु रकारा का स्टेटस 74 अश ताइगा या तागेंगे कितियों कानी देगी लिखे कितों कोन ते का याना नाता का केंगे कितों कोन के कोन 700 को गाय फाउल नमवाउन यानी कोयो दगे का मोजा उगिचे कासा